अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो

अवरा पैके मन लाजुम रसा, अवरा पैके मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मुरुख कोल ना को। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूंगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा वो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत खडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु

0: जो सांस गिरा सत्याए मेरा हर हर सोमर से जो गुरु मन भाव
1: जनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे
1: तिस गुर सिख गुर

सो अंत सो बहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तन्मय आकाश प्यार सर्व लोक को।

उदत जाति जिनसी रंगी उदत जी जहां उदत नेकियां उदत बदियां उदत मान अपमान उदत पौन पाई बैसंतर।

0: साथ पटपट बेड़ी पहिए पटपट गड़िए खास प्रिय जित वर्ष वर्ष प्रिय जिते मास प्रिय जिते आज प्रिय जिते सास
1: सौ वे जी आया प्रांगी आया खाया सात आया बुध खाया दूजा भाया।

कूड़ पर जा कूड़ सा संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना कूड़ पार कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खपोए खा।

कौड़ी दान महंडा तो लिखा तो मिले तमस्त कलाई है कूड़ा लाल छेड़ी है होए कमना लाल त्याई है फल तेरे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो

0: दारू सुखरो पै जस तन होए तू करदा करना मैं नहीं जाहो करी ना होई
1: बलिहारी कुदरत वसिया।

खत्री शब्द सुर शब्द शुद्ध शब्द प्रा करत सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो नानक दास है सोई नन्न दियो महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा मस्त जे को

0: भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पीरनी दी चुगी विच पहुंचे भगवान, जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा। कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल। पीरनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला, रब नू बड़ी भुख लगी। बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष, नाम जप के नाम दी प्राप्ति, नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो। जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे नु भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है, तुरे तां हन जेड़ा तुरिया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा, गली बाती तो पहुंचिया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है, पर भाई महापुरुषां दा कथन है गल्ला नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी, पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साई दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम। कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी है। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा है, ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी, चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे साध जना की सेवा लगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस लेंदी है, अज रब तुठा है अज रब रुस गया है, चलो मना उस माता कोल चलिए। मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताईं।

0: वायन के रूप होए प्रगटिया,
1: वायन के रूप होए प्रगटिया।
0: तो आप केड़े केड़े रूपा जाए ने, वायन के रूप अनेका रूप आ जाए गुरु दर्शन महाराज। सत युग तय माने छलियो बल ब्राह्मण पायो, मायन के रूप हो प्रगटिया, मावा गोविंद सिंह वायन के रूप। सत युग तय मानियो छलियो बल ब्राह्मण पायो, त्रेता तय मानियो राम रघुवंश कहायो, वायन के रूप हो प्रगटिया, वायन के रूप।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सब तिसका सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तू सबना के प्रतिपाला जियो तब तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सेना तू मेरा पिता तू है मेरा माता।

बंधु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब प्रभु जी पास सब किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई जे

जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवा चरण शरण अनाथ ना फतनी अपनी कृपा करे चल कमल नानक आ दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत मरायन तन गोपाल गुण साखी चरण

मध्यन होत साधु तुरे आवण जानू रे तिथ पाई जन्म मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दगुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन्मान सब बनिहार हर गुण गाओ साफ सफाई हर गुण गाओ साफ सफाई मन पिंडे